0: ये है लाइका रेडियो। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
4: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
3: From Tamworth to Albury, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Advertise on Leica Radio Midlands, covering Birmingham, Leicestershire, Coventry, Derbyshire, Wolverhampton and Shropshire. Call us today on 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा

असंक अमर कर जाए जोर, असंक गलवड हत्या कमाए, असंक पापी पाप कर जाए, असंक कूड़े यार कूड़े फिराए, असंक मलेच मल भक खाए।

साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव संख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए।

जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Breakfast with Deep Roger.
2: I love the next song. I'm sure you will do too, especially if your name's called Lena.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 p.m.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: The Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Leica Radio.
3: एंड येस फाइनल फ्यू डेज हैं अब बस बाकी हैं इनफैक्ट कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं आज ही का दिन बाकी है टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क इट टेक्स प्लेस ऑन द ओवो वेम्बली अरीना एंड दैट्स संडे 27th ऑफ सेप्टेम्बर दैट्स टुमारो डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM और उसके बाद होगी मेन परफॉर्मेंसेज जो कि शुरू होंगी 6:15 बजे से और रात के 9:30 बजे तक और अगर आपने अब तक टिकट नहीं बाय किए तो स्टिल दिस Chance you can go and buy tickets www.diwalistory.com.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: yet noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
2: आपका नया स्टेशन Leica Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 टिल 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूं. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही

0: emergency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 126.92 Indian rupees, 85.54 Afghan Afghani, 367.21 Pakistani rupee, 162.91 Bangladeshi taka, 437 Sri Lankan rupee, 171.57 Kenyan shilling, 1.32 US dollars and 62.95 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. L-Y-C-A. This is LIKA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: Gold in pounds is trading at £104.14 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: LIKA Radio.
0: Cranking out the biggest hits for the capital. This is LIKA.
1: And yes, it's a special, special day for Jayant and Meena. And of course, they are missing Ritu. But Ritu ji, this is Sheena. But definitely, aapki request mein definitely, definitely honor leke jaungi. They are celebrating their 50th wedding, golden anniversary. Bahut hi khoobsurat, 50 saal ka saath. To bahut hi aap lucky hain, jo apni 50th golden anniversary celebrate kar rahi hain. So live it to the fullest, enjoy kariye. और आपने डेफिनेटली कहा कि आप प्रोग्राम एंजॉय करी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और ये जो पल है ना, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि इस एज में आके पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो कंपेनियन बन जाते हैं. इवन देयर कंपेनियन, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू. सो एंजॉय एंड चेरिश दीज मोमेंट्स. और बहुत ही खूबसूरत से आई एम श्योर आपका सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली होगा. तो हो सकता है, क्या पता हमें भी थोड़ा सा कुछ केक वेक मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए. We always are ready for that. But definitely, like a gold ki team ki taraf se, happy wedding anniversary, a golden anniversary, and we wish you. Aap diamond pe jaiye, aap celebrate kijiye aur aise hi like a gold ko sunte rahiye. Thank you so much, and have a lovely, lovely, lovely anniversary time. तो एक खूबसूरत सा रोमांटिक सा गाना, और बिल्कुल सब दिन नारायण अलका याद नहीं, कयामत से कयामत तक. गजब का है दिन, डेफिनेटली ये दिन गजब का है ही. और आप सब लोगों का साथ और मेरा साथ तो रहेगा, राइट अंटिल 1 o'clock. दिस इज शीना ऑन लाइक अ गोल्ड.

0: कसम से मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को भी डेफिनेटली उतना ही मजा आ रहा होगा। दिस इज शीना सिटिंग इन फॉर रितु। खूब सारी बातें, खूब सारा प्यार इस गजब के दिन के साथ। एनीवेज़, आई जस्ट वांटेड टू चेक, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरी आवाज़ को काफ़ी और प्रेजेंटर्स के साथ कंपेयर किया था, एंड वी ऑल यू नो समवे वी साउंड, ऐसा होता है ना कि एक ही परिवार के होते हो तो सब लोग सेम ही साउंड करना शुरू हो जाते हैं, बट डेफिनेटली लोग, बहुत सारे लोगों की मेरी आवाज़ जो है रूबी जैसी सुनने में आती है, तो दैट इज़ क्वाइट अ बिग कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो तो डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ लाइक अ गोल्ड, बट थैंक यू सो मच, और ये मैसेज मैं ज़रूर रूबी तक पहुँचाऊँगी। एंड रूबी, यू हैव गॉट लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग, काफ़ी लोग आपको मिस भी कर रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि रूबी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं ऑन एयर, सो रूबी डेफिनेटली यू टू कम बैक, एंड लॉट्स ऑफ लव टू रूबी।
1: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
3: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
2: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
3: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
2: And wait, the Diwali mega offers are here.
3: Bigger savings, amazing prices and fantastic value, all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
2: Falcon Cash and Carry, your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU and 2A Rowlatts Hill, Leicester, LE54UN.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Is an opportunity. So now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions, and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757. To arrange your meeting.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: December ka to maloom but Ramba definitely ho ho. Usually we have Christmas ka ho ho ho, but this time it's different one, isn't it? Santa Claus ka ho ho hota hai, but Bollywood kuch bhi kar sakta. Am I right or am I right? I'm always right, right? Or yes, this is Ashina sitting in for Ritu. Ek bahut hi khoobsurat sa section wo karti hai yaadon ka. So I'll try and do something on yaadein. And aaj to waise bhi ek bahut hi khoobsurat sa din hai. It's 26th of September. Aur aaj ek khoobsurat sa din isliye hai kyunki aaj kisi special actor ka janam hua tha. Do you have any guesses? और जो 26 सितंबर है हम याद आज करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ऐसे तारे को जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने एक चार्मिंग सा चेहरा आ जाता है एक खास अंदाज एक खास सी स्माइल एंड टुडे इफ ही वाज विद अस ही वुड हैव बीन 103 इयर्स ओल्ड अभी भी याद नहीं आया टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी इंडियन एक्टर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर देवानंद साहब Born in 1923, the iconic evergreen hero, Hindi cinema ke, jinhone khoob surti se apna career start kiya aur pata nahi 100 se upar filmein bhi ki. Unke bare mein jitna bhi kahungi, bahut hi kam hoga, but we'll try and see kis ghante mein kitne unke, matlab beautiful se ek do gaane bhi bajayenge aur uske baad bahut sari khoob sari baatein bhi karenge. Aur unhe na Bollywood ke cinema mein, Indian cinema mein sirf filmon ke liye nahi jana jata tha. Unke ek style, unhone ek style create kiya tha apne era mein. एक रोमांस क्रिएट किया और सबसे बढ़कर अपनी फिल्मों के गानों के जरिए हमारी जिंदगी में बहुत सारी यादें छोड़ गए और उनके हर गाने के पीछे ना कोई एक मतलब होता था अगर ध्यान से समझें तो डेफिनेटली यू विल गेट इट एंड आई एम गोना प्ले फ्यू आइकॉनिक ट्रैक्स आल्सो सो स्टे ट्यून्ड दिस इज शीना चलिए इकट्ठे याद करते हैं देवानंद साहब को और आप मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा गाना आपको उनका जो था बहुत पसंद था क्योंकि वो ऐसे इंसान थे जो सिर्फ हमेशा स्माइल करते हुए दिखते थे तो लेट मी नो एंड आई एम गोना प्ले अ नाइस ट्रैक राइट आफ्टर दिस सो स्टे ट्यून्ड ऑन लाइक अ गोल दिस इज शीना
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 126.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or simply using SBI Uno mobile app. Terms and conditions to apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Laika.
2: And yes, khoobsurat sa gana. And we are celebrating Devanand's. Bahut hi khoobsurat sa birthday celebration going on. Aur yes, jaise ki maine kaha unka ek apna hi ek alag hi style tha. और वो जो ब्लैक सूट इन्होंने कहा तो ये भी जाता है उनको ब्लैक सूट जब वो पहनते थे तो बैन था रोज पे बिकॉज सब लड़कियां उन्हीं को देखती रह जाती थी एंड दे वुड जंप फ्रॉम बिल्डिंग्स जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम ओएमजी इनफैक्ट अगर आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है कि व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड इन मुंबई और जो कि 1943 में था और उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे और उन्होंने क्लर्क काम किया गवर्नमेंट आर्म्ड ऑफिस फोर्सेस में सेंसरशिप के ऑफिस में और उनकी मंथली सैलरी सिर्फ 165 रुपए होती थी टू सर्वाइव बिफोर गेटिंग हिज बिग ब्रेक इन हम एक हैं इन 1946 तो किसी भी एक्टर की कहानी इतनी सिंपल नहीं होती हम उन्हें पर्दे पे देखते हैं और सोचते हैं वाह यू नो इनकी जैसी जिंदगी हमें मिल जाए बट एवरी स्ट्रगल हैज अ स्टोरी इजंट इट और ऐसी स्टोरी देवानंद की है पर मुझे एक बात उनकी बहुत ही जो है अच्छी लगती थी कि उन्होंने कभी ये रियलाइज ही नहीं होने दिया कि वो बूढ़े हुए हैं यू नो दैट्स बेसिकली वाज ऑलवेज यंग एट हार्ट व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज ही नेवर लेट पीपल इवन थिंक अबाउट कि बुढ़ापा आता ही है यूं इंसान चले जाते हैं पल गुजर जाते हैं लेकिन यादें जो है ना ये हमेशा जो है वहीं की वहीं रह जाती हैं एंड द नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोना प्ले इज डेफिनेटली वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रैक आई हैव टू से नहीं ऐसे तो बहुत सारे हैं अभी हम प्ले करेंगे पर लेकिन इस गाने में ना एक मतलब है उस मतलब को मैं उस गाने के बाद समझाऊंगी क्योंकि उस गाने में खूबसूरत सी फिलॉसफी को दर्शाया गया है जिंदगी के बारे में तो जिंदगी में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है एंड दिस वाज इज अ ब्रेक थ्रू मूवी जहां उन्होंने एक्टिंग के बाद एक अलग डायरेक्शन दी लेट्स हियर इट आउट
0: लाइका रेडियो Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: This is Laika.
2: एंड यस, गाता रहे मेरा दिल. क्या खूबसूरत सा गाना था. नहीं, जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता. दिस इस गाने का बस यही मतलब है. कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ते हैं, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं. लेकिन शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी देव साहब जी की सिनेमा की खूबसूरत बात ये थी कि उनके करेक्टर्स में एक जिंदगी को जीने की जिद नजर आती थी, जो कि बहुत ही मुश्किल है, राइट. और शायद इसी वजह से उनकी फिल्में और उनके गाने आज भी यू नो दे लुक प्रिटी न्यू, नए से लगते हैं. नहीं, और यही सब, और इनफैक्ट ये मूवी तो गाइड का था, और वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे. और उनकी यही फिल्म गाइड को हिंदी सिनेमा की लैंडमार्क फिल्म्स में गिना जाता है. और उनकी स्क्रीन पर्सोना की तो मैं क्या बात करूँ, इतना डिस्टिंक्टिव था. एक मतलब उनका एक लुक, एक हेयर स्टाइल, और स्पेशली आई स्टिल रिमेम्बर एक स्कार्फ, OMG, अपने आप में एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता था. अभी लोग जितना मर्जी ट्राई कर ले, दे कैन नेवर बी लाइक हिम, राइट, अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ. ही ऑलवेज मेक्स श्योर कि जिंदगी को जियो, बिकॉज ये जिंदगी है ना, एक बार मिलती है तो दो बार क्यों सोचना. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ट्रैक आई हैव टू कन्फेस, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स है. बहुत पुराना गाना है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बट इस गाने का जो डीप मीनिंग है ना, अगर आप एक लाइन सुनेंगे तो यू विल कनेक्ट विद इट. और बहुत सारे लोगों ने इस गाने की फरमाइश भी की है, तो आप सबके लिए भी, जिन्होंने फरमाइश की, जिन्होंने नहीं की, वो डेफिनेटली गाना सुने. फ्रॉम द फिल्म हम दोनों में जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7.

0: is Laika.
1: What a beautiful track. What a meaningful track. इसको अगर एक ही लाइन में कहना हो ना इस गाने के बारे में, the ultimate anthem of जिस तरीके के वो carefree इंसान थे, optimistic थे लाइफ के बारे में और उनकी फिलॉसफी के बारे में, that is what this song is all about. And it's all about carefree, a nirvana state of mind. That is basically, you know, इस गाने का main crux था. क्योंकि सिंपली वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि गम हो या खुशी हो, यू जस्ट हैव टू बी बैलेंस, यू हैव टू बी न्यूट्रल. आजकल आप देखेंगे कि काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर इसी बात को कहीं ना कहीं से दोहरा रहे होते हैं, पर वी जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट, वी जस्ट सिंपली फॉरगेट. एक खूबसूरत से कई गाने ऐसे हैं जो वही सब दर्शाते हैं. दिस इज वी आर टॉकिंग एंड गोइंग बैक इन 60s, राइट? सो देव साहब के लिए सिर्फ लेजेंड कह देना शायद काफ़ी नहीं होगा. वो एक एहसास थे, एक स्टाइल थे, और उनकी फिल्मों के गाने तो जैसे हमारी जिंदगी की कहानियों का हिस्सा बन गए थे. तभी तो उनको रिलेट कर पाते हैं. तो होप यू आर एंजॉइंग दिस यादे सेक्शन. आई एम गोना प्ले वन ऑफ हिज मोर ट्रैक, और फिर आई एम श्योर माय फेलो प्रेजेंटर्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. और जो नेक्स्ट गाना आ रहा है उसके लिए मैं ये बता सकती हूँ, जब मैंने वो गाना पहली बार देखा था ना, तो मैं ये सोचती थी अगर मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ चाहिए ना तो मैं देवानंद साहब जी के पास जाऊँगी. कहीं ना कहीं से उनके पास हर कलर की चूड़ी थी उस गाने में. एनी गेसेस? एनी गेसेस? दिस इज शीना ऑन लाइका गोल.
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
1: एंड यस, दिस इज द लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड, पॉडकास्ट एपिसोड 35, अ बिग बिग one. And basically this was hosted by Ruby Rizai and Donnie Brasco. Raj Padhan talks to Ruby and Donnie about stepping into the role of the CEO of one of the Britain's largest Asian radio network. और इसके बारे में बोलना पड़ेगा हमें, Laika Radio Network आप सब लोगों को पता ही है. And his journey behind the title, what a man, and of course what a vision, I should say that. In this special 5-year showcase, Raj talks about the nerves and responsibility that came with the role in this of the CEO and the changes he wanted to bring to the organization, which we all have seen, jo ki mumkin nahi tha, na mumkin tha, but unhone mumkin karke dikha diya. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platform. Do listen and let me know.
0: Laika Extra is here. All the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Yeh hai Laika Radio.
2: Laika Radio. This Diwali, let your celebrations shine brighter.
3: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
2: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
3: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
2: And wait, the Diwali mega offers are here.
3: Bigger savings, amazing prices and fantastic value, all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
2: Falcon Cash and Carry, your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU and 2A Rowlatts Hill, Leicester, LE54UN.
4: Get ready, UK. Snill-

0: एंड दिस वॉज आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, बट या एक ऐसी आवाज जिसमें क्लासिकल ट्रेनिंग की गहराई भी है और बॉलीवुड की मस्ती भी, वन एंड ओनली कविता कृष्णमूर्ति, एक ऐसी सिंगर जिन्होंने इफ़ यू रिमेंबर हवा हवाई भी इतने स्टाइल में गाया था और फिर उससे लेकर तू ही रे भी इतने सेंसिटिविटी से गाया था. तो शी इज़ ऑल अबाउट अ वर्सटाइल बेसिकली सिंगर और आई जस्ट प्लेड वन ऑफ द ट्रैक विच डेफिनेटली इज़ वन ऑफ अ बेस्ट ट्रैक फॉर मी बिकॉज इसमें इन्होंने अपने पूरे एकदम तरीके से इशारे दिए हुए हैं. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज़ अ टेरी वैली गाना एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाना एंड ऑन द वोकल्स ऑफ ABBBS अमिताभ बच्चन एंड आशा भोसले. आर यू रेडी फॉर इट? वैसे तो कहते हैं दो लफ्जों की ही दिल की कहानी होती है, बट ये दो लफ्ज बहुत मुश्किल होते हैं. नहीं
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: वे साय तू ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा

0: media.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा

0: छोरा
1: गंगा किनारे वाला,
0: किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: क्या खूबसूरत सा गाना है एंड दिस एवरीवन नोज इज फ्रॉम द मूवी डॉन एंड वी ऑल लव दिस सॉन्ग स्पेशली ऑब्वियसली देन वी हैड द रिक्रिएटेड वर्जन जो कि शाहरुख खान जी ने भी किया था बट इसमें जो अमिताभ बच्चन ने दिया था वो तो दैट परफॉर्मेंस वाज ऑलवेज ऑलवेज द बेस्ट वन आई थिंक इट वाज अ करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल भी किया था और उनकी एनर्जी कैफ्री डांसिंग एंड विद हाई ऑन वांग वो तो काफ़ी लेजेंडरी ही बन गया था और किशोर कुमार ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरत से गाया एंड नॉट अबाउट दैट यू नो देयर वर फैक्ट्स बट व्हेन आई वाज रीडिंग इट ये भी कहा जाता है कि ये गाना पहले था ही नहीं मूवी में और उसके बाद बेसिकली कम्प्लीटली फ्लिप हो गया और जब ये गाना आया तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस की डेस्टिनी बदल गई तो ये इस गाने ने जितनी इनको फेम दिलवाई है वो तो यू नो वी ऑल नो अबाउट इट टिल डेट व्हेनेवर यू लिसन टू दिस ट्रैक यू जस्ट वांट टू

0: is Laika.
1: What a beautiful track. और इस गाने को आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा, right? Unlimited time. And of course, this is definitely a गाना जो हमेशा सुन के कुछ नया सा ही लगता है. लेकिन क्या आप लोगों को पता है परिंदा का ये romantic गाना actually असल में एक बहुत बड़ी dark crime drama का हिस्सा था. असल में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी में कुछ ट्विस्ट है. क्राइम और वायलेंस का बहुत गहरा साया है. तो शायद ये गाना थोड़ा सा कंट्रास्ट कर देता है, मेक्स यू फील मोर लाइटर. बट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी इंटरेस्टिंग वन टू. एंड यस, आई जस्ट हैव टू टेल, इस गाने में बेसिकली ये फिल्माया गया था विनोद खन्ना पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. भैया, होप यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक. एंड आफ्टर 1 o'clock ऑन द एयरवेव्स इट विल बी अनुराग जी विद हिज गोल्डन राग. And I am going to say bye-bye. हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते-चलते. Definitely मिलेंगे हम, कल मिलेंगे between 10 to 1. And there'll be a lot of dhamal, as I always say. The show that's going to be more entertainment and more entertainment. बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला मुझे. Thank you so much for that. To all the listeners who are listening and to all the listeners who are listening and also messaging, I'll see you tomorrow between 10 to 1. And I'm going to leave you with this beautiful track. So keep on enjoying Saturday. खूब enjoy करिए, खाइए पिए, gym जाइए, जो भी करिए. बट एक बात ध्यान में रखिए, जिंदगी एक बार मिलती है तो दो बार क्या सोचना, right? This is Tina saying bye bye.
0: ये है Laika Radio. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: It's back, it's bigger and better.
0: ZTV and Laika Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
0: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
0: For store bookings, call 07803-240580
2: or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
3: हमारी रक्षक है वो.
4: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
5: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
4: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.

0: गुड आफ्टरनून. बैक टू बैक दो ब्यूटीफुल गाने आपने सुने, मेलोडियस गाने आपने सुने, और उम्मीद करती हूँ आपका मन भी खुश हो गया होगा. कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें. ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. अगर किसी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं. एंड अगर थोड़ा सा मूड ऑफ है, फीलिंग लो, तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय. जियो शान से, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए. गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए. अगर आपके मन को भा जाएं तो मुझे इशारा चाहिए आपकी तरफ से. यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी कि कहाँ बैठे आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और क्या ये गाने आपकी पसंद की कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं या नहीं. प्रोग्राम के पहले दो गीतों में एक वर्ड था जो बार बार आ रहा था. कौन सा वर्ड था, क्या आपने पहचान लिया? वैसे हमारी इंतशा आपने तो बिल्कुल पहचान लिया, अर्जुन जी आपने भी पहचान लिया है, थैंक यू एवर सो मच. और भी शायद होंगे जिन्होंने ठीक जवाब दिया, लेकिन मेरी नज़र आप दोनों के मैसेजेस पर पड़ी है जो कि बिल्कुल शुरू में ही आपने लिख दिया है, तो पूरे मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े हैं. मेरे बिन बुलाए भी आप आते हैं और बड़े प्यार से मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसी तरह से अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहिएगा, एहसास मुझ तक पहुंचाते रहिए कि आपको ये गीत पसंद आ रहे हैं. पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म करीब से. विदू विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बनाया था एंड इस फिल्म में काम किया था बॉबी देओल ने, साथ में थी शबाना रजा एंड मौसमी चैटर्जी, एंड संगीत था अन्नू मलिक का. इस गीत में एक नई आवाज़ थी और वो आवाज़ थी संजीवनी की, जो कि रियलिटी शो से बॉलीवुड में गई थी और कुछ एक गीत गाए. और वैसे मैंने उन्हें इंटरव्यू भी किया तो उन्होंने बताया कि वो बहुत से रिलीजियस गानों की टेप्स भी बनाती हैं, सीरीज़ उन्होंने बहुत रिलीज़ किया. नाम है उनका संजीवनी, अगर आप गूगल करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, और अगर उनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. दूसरा गीत मैंने फिल्म नूरी से चुना था और नूरी मनमोहन किशन जी ने बनाई थी, डायरेक्ट की थी ये फिल्म. इस फिल्म में खयाम साहब का संगीत था, जाने सारा अख्तर साहब ने और नक्श लाइलपुरी जी ने गीत लिखे थे इस फिल्म के, एंड इस फिल्म में फरूख शेख थे, पूनम ढिल्लन एंड मदनपुरी ने काम किया था. 11 मई 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपको पसंद आए. चलिए अब जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, भी बता दें आपको, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बड़ा आसान है. यू कैन ऑलवेज वॉक इन टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन, और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसके ज़रिए घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर. और आज के दिन एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 126 रुपीस एंड 40 पैसा.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भाई, जो मेरे बहुत सी क्लेवर क्लेवर लिसनर्स हैं उन्होंने पहचान लिया कि क्या कॉमन है आज के गीतों में. कौन सा गीत आपको याद आ रहा है जिसमें ये वर्ड बार बार आते हैं, तो बताइएगा मुझे, जानना चाहूंगी आपसे.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Trika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Hamari rakshak hai wo.
3: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
4: Mujhe jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai, kaun kar raha hai?
3: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia. In cinemas now. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
5: Namaskar. March 2027 ma Maharaja Tours sathe mano Japan nu adbhut cherry blossom season. Aao ane jo Japan nu sundar cherry blossom, shresht sightseeing, swadisht Indian jammanu ane ghana bada yadgar anubhavo. Matra £4,499 per person, jema flights, accommodation ane excursions batano samavesh che. Seats limited che, etle aajej tamaru booking karo. Visit maharajatours.co.uk or call 07956 154 846.

0: यही तो होता है प्यार। मुकेश जी और लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत मैंने फिल्म पारस मनी से चुना था। 1963 में आई थी ये फिल्म एंड द फिल्म इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म टुगेदर ऑफ द म्यूजिक ड्यो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और उससे पहले उन्होंने एज एन असिस्टेंट काम किया, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ने सबसे पहले फिल्म पारस मनी में संगीत दिया था। फिल्म के गीत लिखे थे असद भोपालिया एंड फारूक कैसर ने। फारूक कैसर साहब ने हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिखा था, बाकी के गीत असद भोपाली जी ने लिखे थे। आई होप यू इन्जॉय द सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच आपके बहुत ही मीठे मीठे प्यारी प्यारी बातों के लिए जो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझ तक पहुंचा रहे हैं। सरित आप हैं संतोष जी, थैंक यू अर्जुन जी, उल्लास इन टोरंटो, सुमीला मंगर एंड सलमा मेडस्टोन में, भरत गंगाराम जी, फरजाना जी, हाना एंड आप कौन है, आपका नाम नज़र नहीं आ रहा है, आप हैं सुकु भाई, थैंक यू, मनु जी, भारती जी, फाल्गुनी मुकेश जी, आपका भी इंतजार, थैंक यू, हंसा वोरा जी, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बता दूँ ये गीत जो पारस मनी से चुना था आप तक पहुँचाया। Feel good track.
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई बड़े दिनों से आप हमारे यहाँ से सुन रहे हैं दिवाली स्टोरीज कमिंग। यस, बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। कल है ये प्रोग्राम और इसके बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो जान लीजिए जल्दी से। फाइनल फ्यू डेज़, क्या कहूँ, आज ही का दिन रह गया टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस ऑन एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे यानी टुमारो 27 सितंबर को। डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद द स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस विल स्टार्ट फ्रॉम 6:15 टिल 9:30। टिकट्स अगर अभी तक बुक नहीं की हैं तो गो टू www.diwalistory.com।
2: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: मोहब्बत जिंदगी है इस फिल्म का ब्यूटीफुल गाना आपने आशा जी की आवाज में सुना और उम्मीद करती हूं एक अरसे के बाद जब आपने इस गीत को सुना तो एंजॉय भी जरूर किया होगा वेल मेरे सिस्टम ये बता रहा है कि दिस वाज लास्ट प्लेड ऑन 19th ऑफ जुलाई इन 25 सो कितने एक साल से भी ज्यादा हो गया इस गीत को आपने सुना नहीं था राजेंद्र सिंह कालरा जी आपकी फरमाइश मैंने देख ली है आपने बहुत ही पुरानी फिल्म ढोलक का एक गीत सुनना चाहा जिसमें चोरी चोरी वर्ड आते हैं पर अनफॉर्चुनेटली मेरा सिस्टम इस गीत को मुझ तक पहुंचा नहीं रहा है जो वेल सलोचना कदम जी ने इस गीत को गाया है बट बहुत पुराना हो जाएगा 1951 एंड विंटेज गोल्ड प्रोग्राम है ना मेरे बाद ही आई समटाइम्स आई ट्राई कि 58 और 59 तक के गाने सुना दूं लेकिन 51 थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाएगा बट आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट सैंडी शाह कि ये गाना किसी रोज़ ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करें थैंक यू एवर सो मच फॉर राइटिंग इन और अब ज़रा अपने सभी सुनने वालों को मैं कुछ सूचना देने जा रही हूँ और वो ये है कि हेयर इज़ अ नंबर ये मैसेज है मर्सिडीज बेंज वालों की तरफ से इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क हेयर इज़ अ नंबर दैट शुड मेक यू सिट अप Typical downtime cost UK businesses an average of 1,172 per van per day. And that's why Mercedes-Benz vans created the uptime promise from roadside assistance and extended service hours to real-time vehicle diagnosis and more. And they have a range of advantages designed to keep your business moving. Search Mercedes-Benz vans. Aaj hi aap idhar visit kijiyega Mercedes-Benz vans and today and then discover their uptime promise learn more at mbvans.co.uk/uptime promise so ye thi suchna jo aap tak pahunchayi
2: Leica Radio Network broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: आपको सुनवा रही है वो गीत जिनमें वर्ड आता है चोरी चोरी not only once बल्कि दो दफा भरत गंगाराम जी सुन रहे हैं आप भी सोबत खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप हैं फराज थैंक्स सुनते रहिएगा चेतनम में नीना प्रजापति आपके नाम भी आ रहा है किशोरदा की आवाज में गाया हुआ ये जबरदस्त गाना दिनेश पोपट जी आपके लिए भी सुनिए और एंजॉय कीजिए

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड। मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू।

0: भई थक गए होंगे आप, थक गए होंगे, बहुत कर लिया डांस इस गीत के साथ साथ। जिनका भी आज बर्थडे है उन सब के नाम किया मैंने ये प्यारा सा गीत जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म घर का चिराग। और ये गीत मैं खास तौर पर देशराज जी की प्यारी सी बेटी शिल्पी दहले के नाम करती हूँ। शिल्पी जी आज अपना बर्थडे मना रही हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आएँ, हज़ार बार आएँ, खुशियाँ मनाती रहें, खुशियों को बांटती रहें और खुशियाँ बटोरती रहें। और आपके पापा का कहना है तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। और हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बता दूं कि ये गीत क्यों प्रोग्राम में शामिल हुई। पहला गीत था फिल्म तेजाब से और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म घर का चिराग से। और आज ये जिन पर ये दोनों गीत पिक्चराइज हुए थे वो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। नाम है इनका चंकी पांडे, वॉज बॉर्न एज सुयेश पांडे। सुयेश पांडे 26 सितंबर 1962 में बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। एंड ही मेड हिज एक्टिंग डेब्यू इन 1987 विद द फिल्म चंकी डेब्यू हिज एक्टिंग करियर विद द 1987 मल्टी स्टारर फिल्म आग ही आग ऑपोजिट नीलम कोठारी एंड गेन रिकग्निशन फॉर हिज सपोर्टिंग रोल एज बब्बन इन तेजाब। याद आया आपको, ये गाना भी उन पर ही पिक्चराइज हुआ था, सो गया ये जहां। 1988 में आई थी ये फिल्म विच अर्न हिम अ फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर अ सपोर्टिंग एक्टर। फिल्म प्रोड्यूसर प्रहलाद नहलानी ने इन्हें दो फिल्मों के लिए साइन किया। ही गेव हिम ब्रेक इन 87 by signing for two films, his debut film and Paap Ki Duniya. His second successful film was Paap Ki Duniya again with the Sunny Deol and Neelam Kothari. And subsequently, Chunky Pandey appeared in many multi-hero films from 1987 till 1993. And he had worked in film Tezab mein bhi bahut acha kaam kiya tha with Anil Kapoor and Madhuri Dixit ke saath. And Babban ka jo kirdar tha kaafi mashhoor भी हुआ था। फॉर हिज परफॉर्मेंस इन तेजाब चंकी पांडे वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। एंड तब से उन्होंने फिर साइड हीरो जैसे ही फिल्मों में काम किया, मल्टी स्टारर फिल्म्स में काम किया, लाइक सीनियर एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सनी देओल, संजय दत्त एंड सम ऑफ दोज हिट फिल्म्स विद इन द सेकेंड लीड हम कह सकते हैं वॉज खतरों के खिलाड़ी, घर का चिराग एंड नाकाबंदी, जहरीले, ऐसी बहुत सी फिल्में। विश्वात्मा में भी थे 1992 में, लुटेरे इन 1993, देन आंखें 93 एंड पर्दा है पर्दा जिसमें वो सोलो थे, पर गाने इस फिल्म के इतने अच्छे नहीं चले थे। 1992 में आई थी ये फिल्म। सो चंकी जी को तो हमने मुबारकबाद दे दी और अब शिल्पी जी को भी मुबारकबाद दे दी। शिल्पी जी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और अगर आज आपका भी बर्थडे है तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, खुशियाँ मनाते रहें आप। और अब रेस्ट ऑफ द आवर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं देवानंद जी की फिल्मों के गीत आप तक पहुँचाऊँ, एज इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे, 103 ईयर्स ओल्ड होते अगर जीवित होते तो। उनकी फिल्मों के गीतों में दो गीतों में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गाना होना चाहिए। फूलों के रंग से किशोरदा का गाया हुआ फ्रॉम द फिल्म प्रेम पुजारी, और उसी फिल्म का एक और गीत है शोकियों में घोला जाए। इन दोनों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, फूलों के रंग से या फिर शोखियों में घोला जाए? ए इस फूलों के रंग से, बी इस शोखियों में घोला जाए। जो उन सभी गीत आपके दिल के करीब है जल्दी से लिखकर भेज दीजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, इनके जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो बहुत काम आसान है। You can go into the branch, online जा सकते हैं या फिर SBI Yono मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर कीजिए। आप को आज एक पाउंड के बदले, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल सकते हैं 126 रुपीस एंड 40 पैसे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Trika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: London, get ready for an unforgettable night.
3: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
4: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai, on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: Namaskar. March 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. વિઝિટ મહારાજા ટૂર્સ.co.uk ઓર કોલ 07956154846.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
6: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
7: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
1: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a song, beautiful गाना है. ऐसे गीत हम जब भी सुनते हैं तो डूब जाते हैं गीतों में. आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा. देवानंद जो कि पैदा हुए थे, माँ बाप ने जो नाम दिया था वो था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद. तो उन्होंने धर्मदेव में से देव लिया और पिशोरीमल को निकाल दिया और नाम रखा देव आनंद. 26th of September 1923 में इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी फैन फॉलोइंग. अपनी उन फिल्मों के जरिए ये हमेशा हमें याद दिलाते रहेंगे कि व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही वाज, व्हाट अ ग्रेट डायरेक्टर ही वाज, प्रोड्यूसर, राइटर. एंड पद्म भूषण इन्हें मिला था 2001 में, दादा साहेब फालेकर अवार्ड मिला था 2002 में. एंड आज उनकी 103rd बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें याद कर रहे हैं. Born in Shakkargarh in undivided Punjab, Devanand arrived in Bombay, now Mumbai, with dreams of cinema and began his screen career with Hum Ek Hain. 1946 mein ye film bani thi. Siddhi brought him early success, but Bazi in 1951 helped establish the Devanand audiences would come to recognize instantly urban, romantic, restless and effortless modern. And through CID, Paying Guest, Kala Pani, Hum Dono, Tere Ghar Ke Saamne, Guide, Jewel Thief and Johnny Mera Naam, he became one of the defining stars of post-independence Hindi cinema. And in 1949, he established Navketan Films, creating a banner that became central of some of Hindi cinema's most influential film and brought together talents including Chetanand or Vijayanand and Gurudat. Inki ek team ban gayi thi. Guide, jo 1965 mein aayi, remains perhaps the most ambitious expression of his cinema. Produced by Devanand and directed by Vijayanand, it moved beyond conventional romance into questions of desire, morality, spiritual transformation and personal freedom. Devanand's performance earned him the Filmfare Award for Best Actor for this film, jiska geet bhi aapne suna, aur umeed karti hoon aapne Guide ka mera chuna hua geet pasand bhi kiya. अब मैंने दो गीतों की आपको चॉइस दी थी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, प्रेम पुजारी का फूलों के रंग से या शोकियों में घोला जाए. ज़्यादातर वोट्स जो हैं जिस गीत को मिले हैं वो प्रोग्राम में शामिल होगा. लेकिन उससे पहले ज़रा बता दूं कि गाइड का गीत आप तक किसने पहुँचाएगा.
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio.
0: और जो गीत मैंने चुन लिया है उसमें किसकी किसकी सहमति है, वेल कुछ एक नाम मैं लिख पाई हूँ. देशराज जी, थैंक यू. हंसा बोरा, विशाल जी, रानी फ्रॉम स्लाव, उल्लास जी एंड फाल्गुनी मुकेश इन लिस्बन. एंड आप सबने ये गीत सुनना पसंद किया, लेकिन कुछ एक ने सुनना चाहता दूसरा वाला गीत. किसी और रोज़ ज़रूर शामिल करूँगी. अमित जी, भारती जी, मिसेस शेख एंड भानु जी, सॉरी आज आपकी पसंद पूरी नहीं हो रही है.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: जाए फूलों का शबाब उसमें फिर

0: लता मंगेशकर एंड किशोदा की आवाज़ में आपने फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत सुना हिज क्रिएटिव रेस्टलेस कंटिन्यूड बिहाइंड द सिनेमा एंड बिहाइंड द कैमरा एंड ही डायरेक्टेड फिल्म्स इंक्लूडिंग प्रेम पुजारी हरे राम हरे कृष्ण एंड देश प्रदेश एंड लेटर प्रोडक्शन अंडर नवकेतन फिल्म्स हरे राम हरे कृष्ण ऑल्सो इंट्रोड्यूस ऑडियंसेज जीनत अमान इन द रोल दैट मेड हर अ स्टार
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
0: Aur Sarita jaldi se bata de aapko Punjabi legend Lakhvinder Vadali is coming and Friday 16th October ko at Crystal Grand Slough and Sunday 18th October ko at ICC Birmingham mein aur iske ilawa aa rahi hai Kavita Krishnamurthy the legend Kavita Krishnamurthy performs live at the Royal Albert Hall on Sunday 1st November brought to you by Sanatan Events as a Diwali special and tickets from the venue box office exclusive radio partner hai Leica Radio Network और भी और एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है और वो है जियो हॉटस्टार के बारे में कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and also on Jio Hotstar. Download and subscribe to the Jio Hotstar app now and Jio Hotstar is also available on Sky TV as an app. Like a radio.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. Leica Extra podcast update.
0: भाई इस बड़ी हमारे एक्स्ट्रा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बातचीत है आप ज़रूर सुनिएगा होस्टेड बाय रूबी रजा एंड डॉनी ब्रास्को राजबदन टॉक्स टू रूबी रजा एंड डॉनी ब्रास्को अबाउट स्टेपिंग इनटू द रोल ऑफ सीईओ ऑफ वन ऑफ ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क हिज जर्नी बिहाइंड द टाइटल सुनने के लिए देखने के लिए तैयार हो जाइए और ज़रूर वॉच कीजिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. is Leica Radio.
2: My friend, दिमाग के संकट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक, तरक्की

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
3: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra?
4: You know, I fan shout at football matches.
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Sarita Sabharwal with your weekend classics. L. YCA. This is Leica.

0: इन गीतों के जरिए हमने देव जी को याद किया. देवानंद एक ऐसा नाम जिनका नाम लेते ही पता चलता है कि वो जैसे एक अलग सी पर्सनैलिटी थी. और उनसे मिलने का भी मौका मिला. मैंने उनको स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराना था, बजाय मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराती वो खुद दौड़ कर गई और उन्होंने कहा जिस लेडी ने मुझे इंट्रोड्यूस करना है मैं उनको स्टेज पर बुलाता हूँ. आई गॉट सो मैनी मेमोरीज टू शेयर. और ऐसी बातें सुनकर सोच कर भी बहुत खुशी होती है. एंड जो मेरे साथी बराबर मेरे साथ जुड़े हैं कह रहे हैं ये सावर में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया. तो मुझे भी मज़ा आता है जब आप मुझे लिखकर भेजते हैं कि गाने बहुत पसंद आ रहे हैं और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है. थैंक यू. इंडिया से भी विशेज आ रही हैं, आपने मैसेज भेजा है. दर्शन जी थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत. और नेक्स्ट आवर में वेल पहले दो गाने होंगे वो फिल्में जो आज के दिन रिलीज हुई हैं और उसके बाद कविता कृष्णमूर्ति हैं हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक. एंड उसके बाद कुछ एक गीत मैं शामिल करूंगी हेमंदा की आवाज़ में गाए हुए. और बता दूं सैंडी शाह लेकर आते हैं आपके लिए विंटेज गोल्ड, लेकिन उनकी जगह आ जा रहे हैं सुप्रतिम. तो सुप्रतिम जी का भी आप साथ देंगे, पर अभी मैं नेक्स्ट आवर में आप ही के साथ हूँ तो कहीं जाने का नहीं है, इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा. चलिए बढ़ते हैं हम समाचारों की तरफ. समाचारों के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ टिल 7 o'clock. Birmingham, Leicestershire, Coventry, Derbyshire, Wolverhampton and Shropshire. This is Leica Radio. Midlands.
1: Top stories this hour. Manchester City chairman Khaldun Al-Mubarak has reaffirmed his belief the club will prove their innocence in their Premier League financial rules case. It's understood the process is moving to the appeal stage after reports claim most of the 115 charges against the club were found to have been proven by an independent tribunal. Former City chairman David Bernstein wants a swift resolution.
2: I really hope that this gets dealt with promptly and quickly and also openly, because it's very much been held in secret up to now in camera, which I don't think is a very healthy thing. So I would like to see it open and certainly speedy.
1: Andy Burnham's announced a new scheme to help first-time buyers get on the housing ladder with just a 2.5% deposit. Details will be revealed at next month's budget. It's been confirmed tomorrow's Nations League game between Ireland and Israel will go ahead after a player vote. Ireland's manager, Heimir Hallgrímsson, insists their intentions are purely sport-based.
3: We are not supporting anything that's happened in Gaza. We are playing this fixture because it's the rules of our game. We're playing this fixture because it's the rules of the competition we are in. We said from the beginning, nobody is comfortable playing this game for so many reasons.
1: Hundreds of thousands of people have joined Pope Leo for an open-air mass in Paris. It's the first papal visit to France in 18 years. A gang that plotted to import cocaine and ketamine into the UK, hidden in frozen fish, has been jailed for a total of more than 71 years. It followed a long-running investigation into the so-called fish conspiracy. In sport, Scotland began their Nations League campaign with a goalless draw away to Slovenia in their first game under their new manager. England kick off against world champion Spain at Wembley this evening. George Russell won the Azerbaijan F1 Grand Prix following a thrilling finish with Max Verstappen in Baku. And England women grabbed a last grasp 26-19 victory over New Zealand in rugby union's WXV.
4: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Right, बता दें आपको आज रात partly cloudy रहेगा और light winds चलती रहेंगी. It will go low to 12 degrees Celsius in London and in surrounding areas. कल 23 रहेगा temperature, लेकिन बारिश की भी संभावना है. एंड मैनचेस्टर में इस वक्त है 18, इट विल गो डाउन टू 10 एंड टुमारो इज 19 डिग्री सेल्सियस. एंड इन मिडलैंड आज सनी रहा एंड इट विल गो डाउन टू 7 डिग्री. एंड कल का मौसम भी ठीक ठाक है, कल भी 22 डिग्री रहेगा टेम्परेचर. अपने दिल के टेम्परेचर को ठीक रखिए ना, बाहर का मौसम जैसा भी हो.
4: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल साउथऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands.
0: Sarita Samuel. प्रोग्राम के लास्ट एंड द फाइनल आवर में आपका स्वागत आपका खैर मकदम करती हूं प्रोग्राम के इस आवर के पहले दो गाने 80s के हैं और ये दोनों फिल्में आज ही के दिन रिलीज हुई थी जरा गीत सुनिए और मुझे बताइए कौन सी हैं ये फिल्में क्या आपको नाम याद हैं अगर नाम याद हैं तो बता दीजिए
4: Laika Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Samuel.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, दोनों ही बहुत प्यारे गीत थे। एंड बता दूं कि ये दोनों फिल्में जो हैं वो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन 1980। पहला गीत फिल्म जुदाई से चुना था मैंने, फिल्म जुदाई 1980 की फिल्म। एंड इस फिल्म को टी रामा राव ने बनाया था, डायरेक्ट किया था उन्होंने। एंड इस फिल्म में जितेंद्र एंड रेखा ने काम किया था। फिल्म का संगीत किसने दिया था याद है आपको? लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का संगीत और गाने इस फिल्म के आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। मार गई मुझे तेरी जुदाई, ये वाला गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। एंड जो मैंने गीत प्ले किया मौसम सुहाने आ गए, ये गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था। सामने आ देखें जमाना सारा, ये गाना भी इसी फिल्म का है। और इस फिल्म के अवार्ड्स की बात करें तो 1981 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट किसे किया गया था? बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रेखा को एंड बेस्ट कमेडियन देवेन वर्मा जी को। सो अगर फिल्म नहीं देखी है कभी भी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। दूसरा गीत मैंने पूछा चांद से, एक आइकॉनिक गाना है, बहुत पसंद किया जाता है जब कभी भी हम प्ले करते हैं तो रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत आपके दिल के करीब है क्योंकि इसमें महबूबा की तारीफ है। तो जब भी कोई महबूब अपनी महबूबा की तारीफ करना चाहता है तो इस गीत का सहारा ज़रूर ले लेता है। संजय खान ने इसे डायरेक्ट किया था एंड कादर खान साहब ने डायलॉग्स लिखे थे इस फिल्म के। फिल्म में राज कपूर थे, संजय खान थे, जीनत अमान थी एंड डैनी डेंसन गप्पा ने काम किया था। फिल्म का संगीत था आरडी बर्मन साहब का और आनंद बख्शी साहब ने इस फिल्म के भी गीत लिखे थे। बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठीक चली थी ये फिल्म, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी लेकिन इस गीत को बहुत पसंद किया गया था। और जिन मेरे साथियों ने अभी अभी सुनना शुरू किया उनका मैं स्वागत करती हूँ। आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिले हैं, थैंक यू। कुछ गीतों की फरमाइशें थी, देवानंद की फिल्म का गीत सुनना चाहते थे, दर्शन जी इन इंडिया बड़ा इंतज़ार कर रहे थे लेकिन मैं नहीं शामिल कर पाई, बम्बई का बाबू का गीत। लेकिन मैं आज सुप्रतिम प्रोग्राम कर रहे हैं विंटेज कूल, तो मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ये गाना शामिल कर दें। ज्योति गिरीश शाह, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने लिखा है बोथ द सॉन्ग्स आर वेरी नाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मनु जी, हंसा वोरा जी और जिनके नाम नहीं मैं अर्लियर ले पाई थी उन सबसे माफ़ी चाहती हूँ एंड प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK के जरिए पैसे अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है। You can walk into the branch, ऑनलाइन कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड किया हुआ है SBI यूनो ऐप, तो उसके ज़रिए घर बैठे ही आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 126 रुपीस एंड 40 पैसे एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर The Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Your Dubai property journey starts here.
3: With a special 3-day offer from Danube. Pay just 20% at booking. Danube pays the next 10% and you pay the remaining 70% on handover.
2: Available across all projects. Friday to Sunday only. To is mauke ko miss mat kijiye. Ports Real Estate invites you to the Dubai Property Expo. September 26th and 27th.
3: 10 AM to 8 PM at Marriott Hotel Smithway, Leicester. LE19 1SW. Discover greens, breeze and sharugs. Explore your offer. options and meet our team for prices, availability and bookings.
2: Aaiye, apni Dubai property journey shuru kijiye. No additional discount.
3: Terms and conditions apply.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Beaches 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Laika Radio.
6: Janan. For 15 years, Janan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Janan. For you, for us and for everyone. The Janan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester. Or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk.
2: દોસ્તી મસ્તી અને ઇમોશન્સ ની એક અનોખી સ્ટોરી
7: સામડે કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ
8: નાખતા થઈ ગયા એટલે
2: સોલ સૂત્રા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કરણે
9: તું ગાંડો છે આગળ મારો બ્રેક મારે તો પાછળ મારો બ્રેક મારે છે યાર
2: Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details mate Instagram par follow karo Bakrania Media.

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाया हुआ ये गीत कोयला फिल्म से हमने चुना था। माधुरी दीक्षित पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। कुछ गीतों के साथ बड़ी यादें जुड़ी होती हैं। हमारी एक लिसनर्स थी जिनका नाम था सूर्या सेठी जी, अक्सर इस फिल्म इस गीत की रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाया करती थी। एंड सूर्या जी, अगर आप सुन रही हैं तो ये गीत मैंने आपके नाम किया। कविता कृष्णमूर्ति इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और मुझे उम्मीद है कि ये गीत आपको भी जरूर पसंद आया होगा। और अब
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: एक श्रद्धांजलि हेमंता को, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उनके ही गाए हुए कुछ एक गीत आपके नाम।

0: The voice like no other. Mere words cannot be justice. Words cannot do justice to the quality of that voice, which seems to soothe away the pain of broken heart, fondly called the voice of God. Hemant Kumar was a genius musician, legendary singer who sang in Bengali, Urdu, Marathi, Gujarati, Odia, Assami, Tamil, Punjabi, Bhojpuri, Konkani and Sanskrit mein bhi gaye unhone gaane. Hemant Kumar was born as Hemanta Mukherjee on 16th of June in 1920 in Varanasi in a Bengali family, and 26th of September in 1989 he passed away. Lekin wo itna khazana dekar gaye hain hame, itne pyare pyare geet ki unki awaaz sunte hi रूह को आराम मिलता है. Hemant Kumar sang for films like Irada in 1944. बहुत से 40s में उन्होंने फिल्मों के लिए गीत गाए. हमराही, बिंदिया, जमीन आसमान, फैसला एंड मंदिर, मनमानी, माला, मालदार एंड सजा. लेकिन ही डेब्यूट एज ए म्यूजिक डायरेक्टर विद द बंगाली फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया था एंड एज ए म्यूजिक डायरेक्टर. लेकिन हिंदी की पहली फिल्म उनकी थी आनंद मठ इन 1952, विच हैज आइकॉनिक सॉन्ग्स लाइक वंदे मातरम एंड जय जगदीश हरे. आपको ज़रूर याद होगा. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल हिंदी फिल्म ऑफ हेमंत कुमार इज अर्ली करियर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वॉज नागिन इन 1954, जिसके सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे. मंडोले तंडोले, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, मेरे दिल ये पुकारे आजा, ऐसे गाने दिल चाहते हैं सारे के सारे गाने मैं शामिल करूं. लेकिन कुछ एक गीत प्रोग्राम के इस आवर में शामिल हैं. बता दूं ये गीत मैंने फिल्म खामोशी से चुना था, तुम पुकार लो, हेमंता की आवाज़ में. और ये गीत आप तक पहुँचाया किसने?
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Aur Southall Travel wale aapko batana chahte hain ki they are known for its competitive holidays deals to Dubai, and contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is atoll protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands and breakfast and drive.

0: इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है तुमसे ही प्यार
1: लता मंगेशकर एंड हेमंदा की आवाजें आपने सुनी एक से बढ़कर एक गीत है जी चाह रहा है कि इन सभी के सभी गीत में प्रोग्राम में शामिल करूं लेकिन मुमकिन नहीं होगा मुझे इनका गाया हुआ एक और गीत बहुत पसंद है फिल्म बादशाह 1954 की फिल्म थी आ नीले गगन तले प्यार हम करें बहुत ब्यूटीफुल गाना है एंड आई रिक्वेस्ट सुप्रतिम अगर वो प्रोग्राम में शामिल कर पाए
2: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क द लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन द यूके ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन ग्रेटर मैनचेस्टर and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: Leica Radio.
4: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Pendant the function, Lakhawa.
7: The buy is...

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: इस आवर में एक आवाज आपने कुछ एक गीत सुने हेमंदा की आवाज में गाए हुए बहुत ही मीठे मीठे गीत उनकी साहब बीबी और गुलाम के सारे गाने और फिर उन्होंने 20 साल बाद जो प्रोड्यूस की थी फिल्म उसके गाने सारे एक गाना आ रहा है उस फिल्म का थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh.

0: हेमंत दा को याद किया हमने इन गीतों के जरिए. वैसे तो बहुत सारे गीत है, बहुत सी बातें और करनी थी, लेकिन क्या करूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है और मेरे जाने का वक्त बिल्कुल करीब है. और मैं बता दूं कि एक और गीत है जो शामिल होगा और वो है फ्रॉम द फिल्म ममता, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा. और ये गीत मैं अपनी तरफ से आप सभी के नाम करती हूं और मैं चाहती हूं इसी तरह से अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहिएगा. वसंती एडमंटन से आपने अभी याद किया है एंड आप हैं भाटी जी. एंड देन बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, शानू गांधी, सोइनी रावल जी, आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूं. और यही कहूंगी 4 बजे से मेरे साथ जुड़ा करें. जी हां, 4 से लेकर 7 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है. अगर जिंदगी ने साथ दिया तो कल मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी 4 बजे की खबरों के बाद. और अब मेरे बाद आ रहे हैं यहां लाइका गोल पर सुप्रतिम, सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह, और दूसरी तरफ होंगी सोनिया, एंड मैनचेस्टर में आपका साथ देंगे अंकुर. जहां भी बैठे सुन रहे हैं इसी तरह से एंजॉय कीजिएगा एंड हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग. मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर एंड बाय.
1: लाइका रेडियो. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: It's back, it's bigger and better.
1: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
1: Join us on Sunday the 1st of November from 12 PM up until 8 PM at the Ram Gariya Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
1: For store bookings, call 07803-240-580
2: or visit Diwali Shopping Festival. festival.co.uk.
3: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
4: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
3: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
4: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
3: And wait, the Diwali mega offers are here.
4: Bigger savings, amazing prices and fantastic value, all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
3: Falcon Cash and Carry, your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
6: Start

0: ये है लाइका रेडियो
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. Nimura, nimura, nimura. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Lyco Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल एट होपर
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
0: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December. The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.